0: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. सकाळचे 6 वाजत आहेत. ऐकूया हिंदी बातम्या दिल्ली केंद्रावरून. आपण त्या सहक्षेपित करत आहोत.
1: समाचार होंगी.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई. ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं. हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा. अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है. हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए.
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं. संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है. NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है. इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की. श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया. प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है. दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है. ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है. वीडियो को अब तक 30,30,00,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटा

0: कलखंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोते हो, आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळची 6:05 होत आहे। ऐकूया बँक ऑफ महाराष्ट्र प्रायोजित कार्यक्रम। आषाढी एकादशी विठ्ठल रुक्मिणी महापूजेचा वृत्तांत।
2: आकाशवाणी प्रसारित करत आहोत आषाढी एकादशी निमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणी महापूजेचा आकाशवाणी वृत्तांत। सादर करते डॉक्टर सोमेश्वर पाटील।
3: या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत बँक ऑफ महाराष्ट्र, एक परिवार एक बँक।
4: प्रत्येक स्मार्ट आर्थिक निर्णय तुम्हाला यशाच्या अधिक जवळ घेऊन जातो। बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या स्पेशल टर्म डिपॉझिट योजनेसह 400 दिवसांच्या योजनेवर मिळवा 7.15% व्याजदर। तुमच्या बचतीला अधिक वाढवण्याचा एक स्मार्ट मार्ग, त्वरा करा। ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी, अटी व शर्ती लागू।
5: बँक ऑफ महाराष्ट्र,
6: भारत सरकारचा उपक्रम।
2: श्रोतेहो नमस्कार। आज आषाढी एकादशी, एकादशी ही वैष्णव वारकऱ्यांची महापर्वणीच आहे। वारकरी संप्रदायामध्ये एकादशी व्रताला नेमधर्म मानलं जातं। आषाढ शुद्ध एकादशी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक जीवनातील एक अत्यंत पवित्र दिवस, भक्ती, श्रद्धा, समर्पण आणि नामस्मरणाचं एक महान पर्व म्हणजे आषाढी एकादशी। वारकरी संप्रदायातील लाखो भाविक संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्यांसह अनेक दिवसांचा पायी प्रवास करून पंढरपूर नगरीमध्ये दाखल झाले आहेत। ज्ञानोबा तुकाराम आणि पुंडलिक वरदा श्रीहरी विठ्ठल या जयघोषानं अवघा आसमंत दुमदुमून गेला आहे। जातीपाती, श्रीमंती, गरिबी, भाषा आणि प्रांत यांच्या सगळ्या सीमा ओलांडत भक्तीच्या एकाच धाग्यात सर्वजण गुंफले आहेत।
4: प्रत्येक स्मार्ट आर्थिक निर्णय तुम्हाला यशाच्या अधिक जवळ घेऊन जातो। बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या स्पेशल टर्म डिपॉझिट योजनेसह 400 दिवसांच्या योजनेवर मिळवा 7.15% व्याजदर। तुमच्या बचतीला अधिक वाढवण्याचा एक स्मार्ट मार्ग, त्वरा करा। ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी, अटी व शर्ती लागू।
5: बँक ऑफ महाराष्ट्र,
6: भारत सरकारचा उपक्रम।
2: आज पहाटे 2:20 महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत देवेंद्र फडणवीस यांनी सपत्नीक श्री विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा केली। त्यांच्यासोबत सोलापूरचे आमदार, खासदार, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी श्रीयुत एस कार्तिकेयन, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, तसंच जलसंपदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार अभिजित पाटील, समाधान अवताडे, सचिन कल्याण शेट्टी, पंढरपूरच्या नगराध्यक्षा डॉ प्रणिता भालके, सुरेश खाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते। या महापूजेचा हा आहे अंश।
7: नमस्कार, उत्तरे
8: मित्र

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्ग प्रकरणेषु परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोरदण्ड विधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। संसद भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। सूत्राणामनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामि सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबन्धक स्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवायोगस्य प्रतिभासेतु इति पटलमाध्यमेन 16 युव व्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि। अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतानि सर्वाणि उपायानि प्रोफेसर के राधाकृष्णन् इत्येतस्य अध्यक्षतायां निर्मितोच्चस्तरीय विशेषज्ञ समितेः अनुशंसानुसारं क्रियमाणानि सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणौ जेपी नड्डा, डॉ जितेन्द्र सिंहः च नवदिल्ल्यां सीजेपी इत्येतस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गम्भीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन 3 प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गप्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोधप्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थकचर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य 64.12 billion rupees अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेलसम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे 3 रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय

0: भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मंत्रिमंडलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रोमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षा क्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः संबंध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननम् भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीडी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 7 वाजले आहेत। ऐकूया कार्यक्रम ऐसी अक्षरे रसिके।

0: याबरोबरच भावगीतांचा कार्यक्रम भावधारा इथेच समाप्त होत आहे. यानंतर ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात, 8:15 मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्रावरून, तसंच 8:30.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
3: पक्का. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in. हर घर सूर्य घर.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी. संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे. सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी. भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की. हमले में एक भारतीय नाविक की मौत. मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया. और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला. झंडू कुमार वेट पैराभारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है. संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है. श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं. हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए. और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा. अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं. हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए.
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.
7: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. थैंक यू.
5: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है. सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी. इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है. उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं.
8: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई. उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल किए.
5: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल

0: लोक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
1: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखे ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंटी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows.
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।

0: ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। दो दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government

0: नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात आपण ऐकत होतात उस्ताद अब्दुल लतीफ खान यांचं सारंगीवादन, राग चारुकेशी आणि मिश्र भैरवी, त्यांना तबला साथ मदन मिश्रा यांची. नादब्रह्म कार्यक्रम आपण पुन्हा ऐकू शकाल 2:30 ही आहे आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी. यानंतर थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून हिंदी समाचार प्रसारित केले जातील. आम्ही सहक्षेपित करू.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है. संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है. श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है. श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. थैंक यू.
1: वीडियो को अब तक 30,30,00,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. ये पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है. प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा

0: सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।
1: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने उनके विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कानूनी माहौल बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आयोग ने समावेशिता, आम सहमति और विविध कानूनी परंपराओं के सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लगातार दिखाई है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र पर हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रसार भारती वेव्स ओटीटी प्लैटफॉर्म न्यूज ऑन AIR ऐप सहित 558 किलोहर्ट्जवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 11:05 आणि 9 सेकंद होत आहेत। वेळ झाली आहे मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीतभार ऐकण्याची। श्रोते हो, आज आपण सुधीर फडके अर्थात आपले लाडके बाबूजी यांची काही गीतं ऐकणार आहोत। राम विनायक फडके अर्थात सुधीर फडके म्हणजेच आपल्या सगळ्यांचे लाडके बाबूजी यांचा जन्म 1919 साली कोल्हापुरात झाला। सुरुवातीचं शास्त्रीय संगीताचं शिक्षण त्यांनी कैलासवासी वामनराव पाध्ये आणि बाबूराव गोखले यांच्याकडे घेतलं। त्यानंतर आपल्या संगीत कारकिर्दीची सुरुवात 1941 साली HMV या संगीत क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेतून घेतली। त्यानंतर त्यांनी अनेक हिंदी आणि मराठी चित्रपटांना संगीत दिलं तसंच पार्श्वगायनसुद्धा केलं।

0: वनिता मंडळ हा कार्यक्रम आपण ऐकत होता. प्रसारभारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: जंगल सफारीला गेल्यावर वाघाचं दर्शन म्हणजे ट्रिप वसूल झाल्याचं समाधान. ताडोबातली माया वाघीण तर फोटोग्राफरची हिरॉईनच. एक होती माया ही तिची गोष्ट लिहिणारे अनंत सोनवणे आपल्या भेटीला येणार आहेत.
3: आज ताडोबाला जी ओळख आहे केवळ भारतात नव्हे तर जगामध्ये, ज्याला आपण टायगर कॅपिटल म्हणू शकतो, व्याघ्र राजधानी असं म्हणू शकतो, ती या मायामुळे मिळाली. तिच्यामुळे लोक येऊ लागली.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपाय से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और

0: आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनके अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 1:05 होत आहेत। ऐकूया मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1,00,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: जीआरएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम

0: दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ AI का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त

0: रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
1: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहद सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत MVS निशा यांचं कर्नाटक शैलीतील गायन, राग बेगडे आणि मोहना बेहाग। त्यांना व्हायोलिन संगत कृष्णा नटराजन यांची तर मृदंगम संगत S. हरिप्रसाद यांची। ऐकूया MVS निशा यांचं गायन, राग बेगडे आणि मोहना बेहाग।

डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।

0: अरे रे रे रे रे, पुन्हा तेच घबराट। अरे दाखव की होऊन शत्रूंचा शत्रू।
1: खामोश, जले को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

0: नहीं नहीं नहीं नहीं, घाम ही फुटला, घाम ही फुटला, अंगा लाया सुटलाय गथरथराट, घाम ही फुटला, अंगा लाया सुटलाय गथरथराट।
1: अरे कुठे गेला तो ससुर, हो की डिस्को फाइटर।
2: अरे टकले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे? नहीं समझे, चल फो।

0: बंद कर तू जरा गाणं, जरा दाखव की हंगामा।
1: हंगामा जय हंगामा, कहा गई मेरी गंगम्मा, टकले से घाबर गई क्या, आ दिखाता हूं तुझे हंगामा।

रो मत गंगू, ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा।

0: इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CJP के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
0: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि NEET UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Later, in a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said during the meeting the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
0: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
3: CJP's chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. Earlier today, Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation during the past 10 days following students' protest. He said it was not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched a sharp attack on the Congress and the Samajwadi Party, saying that the paper leak mafia is the legacy of these very parties. He asserted that there are only two places for those who play with the future of students: jail or hell. The Chief Minister was addressing a public gathering today after inaugurating and laying the foundation stone of 125 development projects worth more than 489 crore rupees for the Fatehpur Sadar and Ayasha Assembly constituencies. The Delhi Metro Rail Corporation has informed that entry gates for Rajiv Chowk, Mandi House, Janpath and Central Secretariat Metro stations are now open. Meanwhile, Delhi Police has advised citizens to avoid travelling towards the New Delhi area due to heavy crowds and high traffic congestion observed across the district. Sharing an advisory, the police directed commuters to use alternative routes to prevent delays and ensure a hassle-free journey. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. President Draupadi Murmu has concluded her state visit to Romania and departed for New Delhi this afternoon. Romania was the final leg of the president's three-nation state visit, which also included Moldova and North Macedonia. In Romania, the president held wide-ranging discussions with her Romanian counterpart. President Nicușor Dan aimed at strengthening bilateral cooperation across trade, investment, defence, digital technology, education, renewable energy and culture. The flood situation in Assam remains critical, with over 1.15 lakh people taking shelter in relief camps. Shivasagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood deaths toll to 61. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. In Gujarat, rescue and relief operations are underway on a war footing following heavy rainfall across the state. Severe monsoon conditions continue in the state, with heavy rainfall lashing several parts of the state. In men's cricket, India were 217 for 5 in 19.5 overs against host Zimbabwe in the second T20 international in Harare when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन अद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वत्यागपत्रं प्रदत्तम्। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयेन परीक्षा प्रश्नपत्र अवैधरीत्या प्रकाशन सम्बद्ध अनियमिततां आलक्ष्य चतुर्णां विशिष्ट ट्रैक न्यायालयानां स्थापना विहिता। जम्मू कश्मीरे वार्षिकी अमरनाथ यात्रा अथ च श्रीमातुः वैष्णोदेव्याः पवित्र यात्रा अद्य षड् दिवसीय स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धा। असम राज्ये जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या एकषष्टिः जाता, यत्र एकलक्षतोप्यधिकाः जनाः साहाय्योद्धार शिविरेषु आश्रयम् अगृह्णन्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनं प्रदत्तम्। भारतीय स्क्वैश क्रीडिका अनाहत सिंहः ऐतिह्यं विरीच्य जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप श्रृंखलायाः महिला एकल निर्णायक द्वन्द्वे स्वीय स्थानं रक्षितवती। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोः मध्ये 20-प्रति 20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी मुंबई के विविध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संगीत वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी दिलों को जोड़ देती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने संगीतकार और गायक पृथ्वीराज बोस। उन्होंने अपने संगीत से अनेक गीतों, कार्यक्रमों और मंच प्रस्तुतियों को नई पहचान दी है। आपका संगीत की दुनिया में परिचय है रिद इस नाम से, इसी नाम से आज आपसे बातचीत करेंगे। रिद जी, आपका आकाशवाणी मुंबई में हार्दिक स्वागत है।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपना कि मुझे यहाँ बुलाया गया, और सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम।
1: रिज जी, आपके संगीत सफर में शुरुआत करते हैं। मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि संगीत से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ?
0: ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि जब से होश संभाला है
1: जी।
0: तब से घर में एक माहौल था म्यूज़िक का, संगीत का। मेरी माँ जो है वो रविंद्र संगीत उन्होंने सीखा हुआ था, गाती थी, तो एक माहौल बनता था। जब स्कूल से हम लोग वापस आते थे, पापा ऑफिस से वापस आ जाते थे, उसके बाद पापा चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, फिर हम लोग घर में जो है गाना बजाना करते थे। मम्मी का जो बाजा वो निकल आता था हारमोनियम, और फिर वहाँ से मेरा जो है शुरुआत हुई म्यूज़िक की।
1: आपका औपचारिक ट्रेनिंग कुछ हुआ इस संदर्भ में?
0: हाँ बिल्कुल, जब मैं दिल्ली में था तो गिटार की ट्रेनिंग जो है स्वर्गीय दर्शन सिंह जी, जो कि पहले सलील चौधरी के साथ बजाते थे, उनसे मैंने काफ़ी साल तालीम ली। और अभी बचपन में जो है गाने का जो है सारे गामा जो है अपनी माँ से, उसके पश्चात स्कूल में जो हमारी टीचर थी म्यूज़िक टीचर उनसे, और अभी पिछले 7-8 साल से बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जाने माने श्री अनिल चटर्जी जो मेरे गुरु हैं, और वो डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, डिसाइपल हैं पंडित अजय चक्रवर्ती। उनको तो सभी जानते हैं, वो तो स्तंभ हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के। तो बस वही चल रहा है।
1: संगीत आपके जीवन में इस तरह से आया, आपको कब लगा ऐसा कि मैं संगीतकार बन जाऊं?
0: देखिए संगीतकार का तो पहले पता नहीं था, मैं पहले गायन से ही शुरू किया क्योंकि मेरे मामा थे वो भी गिटारिस्ट थे, उनका अपना बैंड था, तो बचपन में देखता था कि उन लोग का जो सेशन होता था प्रैक्टिस करते थे और गाने वगैरह चलते रहे उनके रूम में हमेशा भी। कभी भी अब जाएं तो ऐसा होता था कि वहाँ जो है उस समय कैसेट प्लेयर हुआ करते थे तो चलते रहते थे, तो वहाँ से वही जो उस समय के जो स्टॉलवर्ट्स थे, जो गायक थे किशोर कुमार, उनकी आवाज़ स्ट्राइक कर गई मुझे, जो एक मर्दाना आवाज़ जो है। और बाकी के जो गायक थे, रफ़ी साहब थे, मन्ना डे थे, तो इनके और जो स्टॉलवर्ट्स थे लता मंगेशकर, आशा भोसले, तो उनको सुनते हुए मैं बड़ा हुआ। और जो संगीतकार बनने की जो एक प्रेरणा मुझे मिली, जो अभी भी लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो है नॉन अदर देन आर डी बर्मन। और
1: लीजेंड संगीतकार ने, पूरी दुनिया में नाम है
0: बिल्कुल
1: उनका।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो समझ थी म्यूज़िक और साउंड्स की, जो कैसे उसको प्रयोग किया जाए हर एक शब्द को, हर एक साउंड को, तो वो उस चीज़ को मुझे काफ़ी जो है ना वो टच किया, काफ़ी वो
1: जी
0: चीज़ भा गई मुझे। और बस वहीं से, और पहली बार जो है खेल खेल में क्या हुआ कि हमारे स्कूल में जब मैं 9th में था
1: जी
0: तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो जा रहे थे, तो उनकी फेयरवेल पार्टी थी, फेयरवेल में फिर जो है कहा गया कि आप जो है कुछ बनाइए उनके लिए,
1: जी
0: तो मैंने कुछ लिखा, कुछ लड़कों के साथ बैठ के लिरिक्स, उन लोगों ने हेल्प किया मुझे, और फिर मैंने ट्यून बनाई और धुन बनी, तो वो मैंने फिर गाया वहाँ पे, तो सबने उसको पसंद किया, वहीं से शुरुआत है।
1: आपकी पहली कोशिश आपको याद है?
0: हाँ याद है मुझे।
1: सुनाइए
0: उसमें
1: थोड़ा
0: बेसिकली क्या है ना कि थोड़ा सा मैंने आर डी बर्मन का एक म्यूजिक है उसको थोड़ा सा मैंने लिया था,
1: जी। ठीक है,
0: दो लाइन में बताता हूँ याद
1: बिल्कुल
0: जितना।
1: बिल्कुल।
0: जा रहे हैं वो देकर

0: जस्ट ऐसे करके हम लोगों ने शुरुआत की
1: जी, रिम जिम की रेस।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद था,
1: बहुत खूबसूरत जो।
0: हाँ तो
1: उसी के आपने मीटर पे ये
0: मीटर पे ये गाना मैंने सेट किया जो पहली बार, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कर पाऊंगा, तो मतलब खेल खेल में बन गया, तो काफी लोगों ने पसंद किया, प्रिंसिपल सर ने भी पसंद किया बहुत
1: जी। बिल्कुल बहुत अच्छे,
0: तो वहीं से शुरुआत है।
1: अच्छा तो एक मुझे ये सवाल आता है कि आपने बनाए किसी रिदम पे बना दिया, आपने पहले सुना उस गाने को, आपको उसी मीटर पे आप लिख के उस धुन के साथ आप आगे बढ़ गए, लेकिन अपने से एक संगीत जो बनता है वहां की शुरुआत कैसे हुई?
0: वो बेसिकली जो है ना कि बीच बीच में क्या होता था कि कुछ कुछ शब्द आते थे, कुछ धुने आती थी, तो फिर वो रह जाती थी अंदर ही दबके। तो एक बार क्या हुआ, 2016-17 की बात है, मैं नहा रहा था
1: जी, बाथरूम
0: हाँ बाथरूम में था, हाँ बाथरूम, तो उस समय अचानक कोई धुन मेरे दिमाग में आई, तो मैंने फटाफट मैंने फोन मांग लिया अपना अपनी वाइफ से, और मैंने वहीं पे उसको रिकॉर्ड किया धुन को जो दिमाग में आ रही थी। फिर नहा धो के निकलने के बाद फिर मैं गिटार लेके बैठा, फिर उसको मैंने एक स्केल प्रोग्रेशन दिया जो मुझे ठीक लगा, और उसके बाद मैंने फिर उसको लिखा भी
1: जी। बहुत अच्छा,
0: हाँ फिर वैसे ही शुरुआत हुई।
1: तो आप गायक भी हैं, गीतकार भी हैं, समझता हूँ मैं संगीतकार भी।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: इस गीत के बारे में थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे, ये गीत जो आपने बनाया था।
0: जी जी जी, तो ये बेसिकली जो गीत जो पहला था ये मैंने जब लिखा, इसमें मुझे सहायता लिखने में किया था बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट हैं
1: जी,
0: संजय मिश्रा जी।
1: अच्छा,
0: बॉलीवुड के लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने कुछ लाइनें लिखी, बाकी मैंने कंप्लीट किया इसका। ये मैंने दिव्यांग लोग जो स्पेशल लोग हैं, और डेफिनेटली ये गाना सबके लिए है, क्योंकि जो लोग जीवन की आपाधापी में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, सब लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, तो उनके लिए काफी मतलब जो है मैंने ये सोच के ये गाना लिखा, इसको कंपोज किया मैंने।
1: मतलब जीवन का संघर्ष आपने संगीत में उतारा।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: सुनना चाहेंगे आपसे।
0: हाँ दो लाइन मैं ये कर देता हूँ
1: जी।

0: बस इसी शुरुआत है।
1: एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि एक गीत है लिखा हुआ, संगीत में ढलता है, कैसे ढलता है, क्या प्रायोरिटी उसमें रहती है, किस चीज़ से आप शुरू करते हैं, क्या सोचकर उसको एक धुन मिलती है, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए।
0: देखिए, इसके कोई सेट रूल नहीं है, ये तो क्रिएटिविटी है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि संगीतकार बनने के लिए जो है ना, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, विद्यालय, विश्वविद्यालय, जहाँ पे जाके आप सीख सको। आप जो है प्रारंभिक नॉलेज ले सकते हो थ्योरी की, म्यूजिक, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट की या जो भी है, राग संगीत ये सब। लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है, ये गॉड गिफ्ट से आती है जो चीज़। इसमें जो आपने जो प्रश्न किया, बहुत ही वैलिड और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये तीन तरीके से होता है। एक हो गया कि मान लीजिए किसी ने गाना लिखा, कोई बात जो हमारे दिमाग में आई है, ठीक है, उसको हम लोगों ने जॉट डाउन किया, उसको लिखा हमने, उसके पश्चात उसको मीटर में बिठाया, एक छंद जिसको कहते हैं, छंद में, जैसे 4/4 होता है, कहर वस्ताल जिसको कहते हैं, फिर 3/4 होता है दादरा, 7/8 रूपक हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे मूड को पकड़ रहे हो उस गाने के। अगर मैं कुछ कंपोज कर रहा हूँ उस समय, तो कोई चीज क्लिक होनी होती है, चाहे उस समय का कोई मुद्दा हो या कोई भी चीज जो अंदर है दिमाग, तो वो दिमाग की उपज है, वो अचानक बाहर आ जाती है। तो बाहर आने के बाद उसको या तो मैं लिख लेता हूँ, लिखने के बाद उसको संगीतबद्ध करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कोई धुन आ गई दिमाग में, उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके ऊपर मैंने फिर शब्द को बिठाया मीटर के अनुसार। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि लिरिसिस्ट कोई बैठा हुआ है तो वो कुछ लिख रहा है, साथ में धुन साथ साथ ही बन रही है। तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे कि संगीत का प्रोडक्शन होता है।
1: आज आप एक सधे हुए संगीतकार के रूप में हैं,
0: जी जी,
1: क्या फर्क आया आपके जीवन में, आपकी सोच में संगीत के विषय में?
0: देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये मानता हूँ कि संगीत जो है, उसको म्यूजिक बोलते हैं, मौसिकी है, उसका मन के साथ बहुत बड़ा ताल्लुकात है
1: जी,
0: क्योंकि सब कुछ कनेक्शन है मन के साथ
1: जी,
0: माइंड मनस जिसको बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया गीत सुन लिया
1: जी,
0: मतलब जो रोमांटिक है, तो वो फीलिंग्स अपने आप अंदर से आती है रोमांटिक।
1: बराबर
0: उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई भी हम लोग दुख के गाने सुनते हैं, कोई भी जो हर्ट टचिंग हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे आंसू आ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर माइंड एंड मनस। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं खुद जो है एक प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ फिजिकल, शायद म्यूजिक नहीं होता
1: जी
0: तो मैं शायद जी नहीं पाता। जीने की जो आस है
1: जी,
0: वो म्यूजिक से आ रही है।
1: बराबर। अभी जो गीत नए नए बन रहे हैं आजकल, उन गीतों में खासकर ऐसा लगता है कि हस्की वॉइस आ रहा है, और पहले के गीत जो खुले आवाज में होते थे, एक क्यों ये फर्क आ रहा है?
0: तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि वेस्टर्न जो है इन्फ्लुएंस है हम लोगों के जो है शास्त्रीय संगीत में, मतलब डायनामिक्स का उतना यूज नहीं करते हम लोग। तो डायनामिक्स का यूज और ये सब जो है सब फॉरेन से आया है
1: जी।
0: हम लोग के इसमें जो है फुल थ्रोट में गाना पड़ता है, तभी उसको अच्छा माना जाता है।
1: बराबर।
0: तो पहले के ज़माने में वही होता था कि जो है ना, और उस समय क्या साजो सामान बजाते थे, जो म्यूजिशियंस होते थे, वो लाइव ऑर्केस्ट्राइजेशन होता था। तो उसी कारण जो है ना, उस गाने को भी उस हिसाब से वो लोग गाते थे। अभी के टाइम पे क्या हो गया, सब कुछ मैकेनिकल है, मशीन्स पे गाने बनते हैं। तो इसमें क्या है कि इमोशंस को देखा जाता है
1: जी।
0: पहले के ज़माने में इमोशंस में किशोर कुमार वगैरह, बहुत रफ़ी साहब इमोशंस में गाते थे, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आने के कारण थोड़ा सा प्रोग्रेशन अलग हो गया है गाने का
1: जी।
0: शब्द हो, म्यूजिक हो, इन्फ्लुएंस फॉरेन का अभी जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो डिमांड है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गाए। क्या एक रीज़न क्यों है कि लोगों को वो कनेक्ट हो पा रहे, क्योंकि मान लीजिए कोई शास्त्रीय संगीत गा रहा है, वो सब लोग नहीं गा सकते, हम इंसान, उस हिसाब से गाना पड़ेगा जिससे कि वो लोग को वो लोग टच कर सके, कनेक्ट कर सके, कनेक्टिविटी बन सके उनके साथ। तो क्या है कि लोग उस चीज़ को आसानी से गा पाएंगे। मान लीजिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग बेसुरा भी होते हैं जो ऑटोट्यून से ठीक किया जाता है, तो लोग उससे कनेक्टिविटी कर पाते हैं कि अरे मैं तो गा नहीं सकता, लेकिन मैं भी इस गाने को ट्राई कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो इसी कारण जो गाने का जो अभी जो है तरीका है गाने का
1: जी,
0: और वो पूरी तरह से बदल गया है इसी कारण।
1: बराबर। अभी ये बताइए कि जो आपका जो प्रोफेशन एज अ संगीतकार, एज अ म्यूजिशियन आपने शुरू किया, उसमें क्या क्या आपको अनुभव आए, कौन कौन से गीत आपने बनाए और किस किस चीज़ के लिए बनाए?
0: मेरा जो पहला म्यूजिक एल्बम आया था बंगाली, तुम्हारी आंखें थी,
1: ये कब आया था?
0: ये 2021 में।
1: 21 में।
0: हाँ हाँ, वो काफ़ी सारा लोगों ने काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। ये गाने का भी एक पीछे कहानी है। मेरे पास पहले ये गाना जो आया था, ये एज ए लिरिसिस्ट आया था।
1: अच्छा।
0: तो किसी ने मुझे अप्रोच किया था कि जो है कि एक मूवी बन रही है छोटी सी, OTT में कुछ है।
1: अच्छा।
0: तो उसके लिए आप जो है कुछ लाइंस लिख दीजिए, सिचुएशन उन्होंने बताई थी, तो उसके ऊपर मैंने वो गाने को लिखा था। उसके बाद मैंने उनको भेजा, उनको पसंद आया, तो उन्होंने फिर बोला वो लोग धुन बनाएंगे। तो फिर बाद में बोला कि आपके दिमाग में कुछ है, मैंने कहा हाँ है। फिर मैंने धुन भी बनाई उसके।
1: अच्छा,
0: तो उनको पसंद आया, लेकिन क्या हुआ कि वो मूवी शेल्फ हो गई, मूवी बनी नहीं
1: जी।
0: तो बाद में मैंने ये गाना रिलीज किया म्यूजिक वीडियो के तौर पे।
1: ये आपका मतलब एक गाना आपने रिलीज किया?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: ये गाने की थोड़ी धुन हमको सुनाएं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंगाली इसमें है
1: जी। बिल्कुल,
0: इसमें है कि एक लड़का और लड़की दोनों शहर आए हुए थे, दोनों जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा
1: जी।
0: कोई उनको काम नहीं मिल रहा है, तो लड़की जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो लड़का उस दिन भी जाता है और असफल होके आता है। जब उसको देख के लड़की समझ जाती है कि आज भी असफल हो गया है, कुछ हुआ नहीं
1: जी,
0: तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। उसको पेपअप करने के लिए लड़का कुछ गा रहा है
1: जी।

0: तो ये दो लाइन है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि चलता रहेगा ना। आपके करियर में आपने कई सारे गीत गाए हैं, तो इस सफर में आपको ऐसा यादगार कोई अनुभव रहा होगा तो हमसे शेयर कीजिए।
0: यादगार अनुभव तो रहा, हर गीत का एक अपनी जगह होती है मेरी लाइफ में, सारे गीत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही एक मूवी के लिए, बंगाली मूवी के लिए मैंने गाना कंपोज किया, लिखा और गाया मैंने।
1: जी
0: वो मूवी जो है अभी इफी जो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसमें गई, फिर उसके बाद केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो मूवी सिलेक्ट हुई थी, और इस साल जो है वो मूवी कांस में उसकी ट्रेलर रिलीज हुई
1: जी
0: और पोस्टर भी, और अभी इसी मंथ जो है ये बर्लिन में जो इंडो जर्मन जो फिल्म फेस्टिवल चल रही थी उसमें ये मूवी ने जूरी अवार्ड जीती है। तो इस मूवी में क्या हुआ, जो गाना मैंने कंपोज किया है वो गाना दो साल पहले कंपोज किया, क्योंकि शूट चल रही थी तो मुझे डायरेक्टर ने बोला था, इनके डायरेक्टर जो है अमिताभ चैटर्जी हैं, काफ़ी नामचीन डायरेक्टर हैं बंगाल के जो आर्ट मूवी बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इस सिचुएशन के हिसाब से एक गाना चाहिए, तो मैंने उसको फिर लिखा, उन्होंने कुछ शब्द भी बताए थे, फिर उसके बाद मैंने उसको जो है धुनबद्ध किया।
1: ऐसा कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है?
0: ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना जो है वो बहुत मुझे पसंद है,
1: जी
0: ये आर डी बर्मन का ही कंपोज किया हुआ गाना है। पहले बंगाली में, फिर वहां से मैं हिंदी में, हिंदी
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत अच्छे। रिच जी, आपने अपने अनुभवों और विचारों से हमारे श्रोताओं को संगीत की दुनिया की एक खूबसूरत झलक दिखाई है। आकाशवाणी मुंबई की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए और इस संगीत के सफर में आपकी यशस्विता के लिए। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आकाशवाणी का कि मुझे ये मौका दिया गया यहाँ आके मैं साझा कर सकूँ अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों के साथ। और अगर जो भी मैंने बात कही है उससे किसी को अगर 10% भी फायदा हो तो मैं सोचूंगा कि मेरा यहाँ आना साकार हुआ।
0: बहुत अच्छे। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम और नई प्रेरक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आकाशवाणी मुंबई के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राजू कुमार भारती ने।
2: हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: शाहीर बाबासाहेब देशमुख आणि सहकाऱ्यांनी गायलेला हा राजा शिवछत्रपती महाराजांचा पोवाडा आपण ऐकलात लोकसंगीताच्या कार्यक्रमात. आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी श्रोते हो आपण ऐकत आहात. रात्रीचे 8:30 वाजलेले आहेत आणि आता प्रसारित करीत आहोत इस सप्ताह संसद में.
1: ये आकाशवाणी है. अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए. लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश. संसद के मानसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया. इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका. हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके. सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे. हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए. सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे. हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा. विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है. किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा. इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई. सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई. इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई. सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे

जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
पूर्वान्ह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई

तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।

0: शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: इस सप्ताह संसद में संसद समीक्षा आत्तापण ऐकत होता आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आता थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारं हिंदीतलं बातमीपत्र समाचार संध्या, 9 वाजता न्यूज ॲट 9, 9:15 स्पॉटलाईट, 9:30 राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करू, आणि रात्री 10 वाजता अखिल भारतीय संगीताचा कार्यक्रम, आज अदिती बॅनर्जी यांचं गायन आपल्याला ऐकता येणार आहे। हा कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करू, पण आत्ता आधी समाचार संध्या दिल्लीहून।

0: फोन आपके पास है, टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा

0: कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स रिसर्चर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए

0: आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुनावे स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंटवार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताज़ा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय

0: ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को डीएनए राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल डीएनए सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक डीएनए में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से, जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है, और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है, जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं। इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है, जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी का उपयोग करके जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन

0: चली सोनीपत के लिए, तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही, साइड में ही, रेलवे स्टेशन के बगल में ही, वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है, और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है। और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है, और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफिल करने में इस्तेमाल किया, और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलकर वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया, और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है, और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये है धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली, और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है, तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है, तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का, कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो Nd जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो Nd की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय कि ये जब हम Nd और Fe को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और यट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है, और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया

0: वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
1: तो भविष्य में यह है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
0: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स की, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है, और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद दो दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब जीरो डे है, और फिर स्लोली स्लोली पांचवें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है, और फिर चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं पांचवें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसी ही हम यूज कर रहे हैं।
0: दोस्तों, IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं,
2: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां की पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे पांच दिन में दो बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती हैं, देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते। तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से, और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं, अटेम्प्ट्स हैं IVF के, वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर चार मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है, ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
0: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
3: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को शामिल किया गया। आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहां पर है।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
3: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो है वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है। और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमरास लगाए गए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
0: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
4: देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि ये कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
0: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
4: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक

0: से गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने स्टेम की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़ी साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़ें, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा। मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा वो कैसे बदलेगा, सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के। तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीडी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोता हूँ, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
0: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नीलमाधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट अ रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित। अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी, परफॉर्मिंग ठुमरी, दादरा, होरी एंड कजरी एंड ऑल्सो एकम्पनीड हर गुरु ऑन न्यूमरस प्रेस्टीजियस ओकेजन्स। इन एडिशन टू टॉपिंग हर एमए एंड एमफिल डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल्स, श्रीमती अदिति बैनर्जी वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरब अंग गायकी उत्सव।
0: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं बैरन रतिया कैसे आऊं।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। She is accompanied on tabla by Shri Bharat Kamat and on harmonium by Shri Saumitra Kshirsagar. She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deep Chandi Tal. Bairan Ratiya Kaise Aaun.

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी, सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was दादरा set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी

0: दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू अ रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
3: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
3: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से

देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आत्ताच आपण नभोनाट्य अधुरे चित्र ऐकलं. लेखक होते डॉक्टर शशिकांत प्रधान. यातील भूमिका आणि कलावंत वंदना, विदुला रमाबाई, समीर निखिल हजारे, विनीत नरेंद्र गोरे, रोहिणी रश्मी जाईल. निर्मिती सहाय्य होतं उमा दीक्षित यांचं आणि सादरकर्त्या होत्या सुषमा हिप्पळगावकर.
1: नभोनाट्य हा कार्यक्रम आत्ताच आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.
3: शेतकरी बांधवांनो, माझा आभार माझा शिवार या कृषीविषयक राज्यस्तरीय प्रसारणात ऐका रसायनमुक्त खरीप, जैविक तंत्रज्ञानाची नवी दिशा या विषयावर तज्ज्ञ शरद भुरे यांची मुलाखत, सोबतच एका माझा ड्रॅगन फ्रूट शेतीचा प्रयोग या विषयावर प्रगत शेतकरी वामन निचंते यांची मुलाखत. हा कार्यक्रम येत्या सोमवारी म्हणजे 27 जुलै 2026 रात्री 7:30 आकाशवाणीच्या सर्वच केंद्रांवरून प्रसारित केला जाईल.

लावण्य रंग ढंगदार लावण्यांचा बहारदार कार्यक्रम लावण्य रंग सादर करते अभिराम सराफ लावण्य रंग

0: बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपना कि मुझे यहाँ बुलाया गया, और सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम।
1: जी, आपके संगीत सफर में शुरुआत करते हैं। मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि संगीत से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ?
0: ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि जब से होश संभाला है
1: जी।
0: तब से घर में एक माहौल था म्यूज़िक का, संगीत का। मेरी माँ जो है वो रविंद्र संगीत उन्होंने सीखा हुआ था, गाती थी, तो एक माहौल बनता था। जब स्कूल से हम लोग वापस आते थे, पापा ऑफिस से वापस आ जाते थे, उसके बाद पापा चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, फिर हम लोग घर में जो है गाना बजाना करते थे। मम्मी का जो बाजा वो निकल आता था हारमोनियम, और फिर वहाँ से मेरा जो है शुरुआत हुई म्यूज़िक की।
1: आपका औपचारिक ट्रेनिंग कुछ हुआ इस संदर्भ में?
0: हाँ बिल्कुल, जब मैं दिल्ली में था तो गिटार की ट्रेनिंग जो है स्वर्गीय दर्शन सिंह जी, जो कि पहले सलील चौधरी के साथ बजाते थे, उनसे मैंने काफ़ी साल तालीम ली। और अभी बचपन में जो है गाने का जो है सारे गामा जो है अपनी माँ से, उसके पश्चात स्कूल में जो हमारी टीचर थी म्यूज़िक टीचर उनसे, और अभी पिछले 7-8 साल से बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जाने माने श्री अनिल चटर्जी जो मेरे गुरु हैं, और वो डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, डिसाइपल हैं पंडित अजय चक्रवर्ती, उनको तो सभी जानते हैं, वो तो स्तंभ हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के। तो बस वही चल रहा है।
1: संगीत आपके जीवन में इस तरह से आया, आपको कब लगा ऐसा कि मैं संगीतकार बन जाऊं?
0: देखिए संगीतकार का तो पहले पता नहीं था, मैं पहले गायन से ही शुरू किया, क्योंकि मेरे मामा थे वो भी गिटारिस्ट थे, उनका अपना बैंड था, तो बचपन में देखता था कि उन लोग का जो सेशन होता था प्रैक्टिस करते थे और गाने वगैरह चलते रहे उनके रूम में हमेशा भी। कभी भी अब जाएं तो ऐसा होता था कि वहाँ जो है उस समय कैसेट प्लेयर हुआ करते थे, तो चलते रहते थे। तो वहाँ से वही जो उस समय के जो स्टॉलवर्ट्स थे, जो गायक थे किशोर कुमार, उनकी आवाज़ स्ट्राइक कर गई मुझे, जो एक मर्दाना आवाज़ जो है। और बाकी के जो गायक थे, रफ़ी साहब थे, मन्ना डे थे, तो इनके, और जो स्टॉलवर्ट्स थे लता मंगेशकर, आशा भोसले, तो उनको सुनते हुए मैं बड़ा हुआ। और जो संगीतकार बनने की जो एक प्रेरणा मुझे मिली, जो अभी भी लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो है नॉन अदर देन आर डी बर्मन। और
1: लीजेंड
0: बाकी
1: संगीतकार है, पूरी दुनिया में नाम है
0: बिल्कुल
1: उनका।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो समझ थी म्यूज़िक और साउंड्स की, जो कैसे उसको प्रयोग किया जाए हर एक शब्द को, हर एक साउंड को, तो वो उस चीज़ को मुझे काफ़ी जो है ना वो टच किया, काफ़ी वो
1: जी
0: चीज़ भा गई मुझे। और बस वहीं से, और पहली बार जो है खेल खेल में क्या हुआ कि हमारे स्कूल में जो मैं 9th में था,
1: जी
0: तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो जा रहे थे, तो उनकी फेयरवेल पार्टी थी फेयरवेल में, फिर जो है कहा गया कि आप जो है कुछ बनाइए उनके लिए, तो मैंने कुछ लिखा, कुछ लड़कों के साथ बैठ के लिरिक्स, उन लोगों ने हेल्प किया मुझे, और फिर मैंने ट्यून बनाई और धुन बनी, तो वो मैंने फिर गाया वहाँ पे, तो सबने उसको पसंद किया, वहीं से शुरुआत है।
1: आपकी पहली कोशिश आपको याद है,
0: हाँ याद है मुझे।
1: सुनाइए
0: उसमें
1: थोड़ा सा।
0: बेसिकली क्या है ना कि थोड़ा सा मैंने आर डी बर्मन का एक म्यूज़िक है उसको थोड़ा सा मैंने लिया था,
1: जी ठीक है,
0: दो लाइन में बताता हूँ याद
1: बिल्कुल
0: जितना
1: बिल्कुल।
0: जा

0: जस्ट ऐसे करके हम लोगों ने शुरुआत की।
1: जी, रिम झिम
0: हाँ
1: गिरे
0: हाँ
1: सावन,
0: बिल्कुल
1: बहुत,
0: बिल्कुल, तो वो
1: हाँ
0: गाना मुझे बहुत पसंद था
1: बहुत
0: जो।
1: खूबसूरत है।
0: हाँ तो उसके
1: उसी के
0: ऊपर
1: आपने मीटर पे ये गाना
0: मीटर पे
1: सब
0: ये गाना
1: लिखा।
0: मैंने सेट किया जो
1: जी
0: पहली बार, जो
1: जी
0: मैंने कभी
1: बहुत,
0: सोचा नहीं था कि कर पाऊंगा,
1: हाँ बहुत
0: तो
1: अच्छा।
0: मतलब खेल खेल में बन गया, तो काफी लोगों ने पसंद किया, प्रिंसिपल
1: जी
0: सर ने भी पसंद किया बहुत,
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे।
0: तो वहीं से शुरुआत है।
1: अच्छा, तो भी एक मुझे ये सवाल आता है कि आपने बनाए किसी रिदम पे बना दिया, आपने
0: जी
1: पहले

0: ना उस गाने को,
1: जी
0: आपको उसी मीटर पे आप लिख के उस धुन के साथ आप आगे बढ़ गए, लेकिन अपने से एक संगीत जो बनता है, वहां की शुरुआत कैसे हुई?
1: वो बेसिकली जो है ना कि बीच बीच में क्या होता था कि कुछ कुछ शब्द आते थे, कुछ धुनें आती थी, तो फिर वो रह जाती थी अंदर ही दबके। तो एक बार क्या हुआ, 2016-17 की बात है, मैं नहा रहा
0: जी,
1: था
0: बाथरूम,
1: हाँ
0: बाथरूम
1: बाथरूम
0: से
1: में था,
0: शुरुआत
1: हाँ
0: होती
1: बाथरूम।
0: है।
1: तो उस समय अचानक में कोई धुन मेरे दिमाग में आई, तो मैंने फटाफट मैंने फ़ोन मांग लिया अपना अपनी वाइफ से, और मैंने वहीं पे उसको रिकॉर्ड किया धुन को जो दिमाग में आ रही थी। फिर नहा धो के निकलने के बाद फिर मैं गिटार लेके बैठा, फिर उसको मैंने एक स्केल प्रोग्रेशन दिया जो मुझे ठीक लगा, और उसके बाद मैंने फिर उसको लिखा भी।
0: जी बहुत अच्छा।
1: हाँ फिर वैसे ही शुरुआत हुई।
0: तो आप गायक भी हैं, गीतकार भी हैं, समझता हूँ मैं संगीतकार भी
1: हाँ जी
0: हैं।
1: हाँ जी
0: इस गीत के बारे में थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे, ये गीत जो आपने बनाया था।
1: जी जी जी तो ये बेसिकली जो गीत जो पहला था ये मैंने जब लिखा, इसमें मुझे सहायता लिखने में किया था, बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट हैं
0: जी
1: संजय मिश्रा जी,
0: अच्छा।
1: बॉलीवुड के लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने कुछ लाइनें लिखी, बाकी मैंने कंप्लीट किया इसका। ये मैंने दिव्यांग लोग जो स्पेशल लोग हैं, और डेफिनेटली ये गाना सबके लिए है,
0: जी
1: क्योंकि जो लोग जीवन की आपाधापी में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में,
0: बराबर
1: सब लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं
0: बराबर।
1: अपनी, तो उनके लिए काफ़ी मतलब जो है मैंने ये सोच के ये गाना लिखा, इसको कंपोज किया मैंने।
0: मतलब जीवन का संघर्ष आपने संगीत में
1: हाँ
0: उतारा,
1: हाँ हाँ
0: सुनना
1: हाँ
0: चाहेंगे आपसे
1: हाँ दो
0: प्लीज।
1: लाइन मैं ये कर देता हूँ।
0: जी

0: बस इसी
1: बहुत
0: शुरुआत
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा, बहुत अच्छा। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि एक गीत है लिखा हुआ, संगीत में ढलता है, कैसे ढलता है, क्या प्रायोरिटी उसमें रहती है, किस चीज़ से आप शुरू करते हैं, क्या सोचकर उसको एक धुन मिलती है, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए।
0: देखिए, इसके कोई सेट रूल नहीं है, ये तो क्रिएटिविटी है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि संगीतकार बनने के लिए जो है ना, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, विद्यालय, विश्वविद्यालय, जहाँ पे जाके आप सीख सको। आप जो है प्रारंभिक नॉलेज ले सकते हो थ्योरी की, म्यूज़िक, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट की या भी
1: बराबर।
0: जो भी है, राग संगीत ये सब। लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है, ये गॉड गिफ्ट से आती है। जो चीज़
1: जी
0: इसमें जो आपने जो प्रश्न किया, बहुत ही वैलिड और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये तीन तरीके से होता है।
1: जी
0: एक हो गया कि मान लीजिए किसी ने गाना लिखा, कोई बात जो हमारे दिमाग में आई है, ठीक है, उसको हम लोगों ने जॉट डाउन किया, उसको लिखा हमने, उसके पश्चात उसको मीटर में बिठाया, एक छंद जिसको कहते हैं,
1: बराबर।
0: छंद में, जैसे 4/4 होता है, एक कैरवा ताल जिसको कहते हैं, फिर 3/4 होता है दादरा, 7/8 रूपक हो
1: बराबर।
0: गया। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे मूड को पकड़ रहे हो उस गाने के। अगर मैं कुछ कंपोज कर रहा हूँ
1: जी
0: उस समय, तो कोई चीज़ क्लिक होनी होती है, चाहे उस समय का कोई मुद्दा हो या कोई भी चीज़ जो अंदर है दिमाग, तो वो दिमाग की उपज है, वो अचानक बाहर आ जाती है। तो बाहर
1: जी
0: आने के बाद उसको या तो मैं लिख लेता हूँ, लिखने के बाद उसको संगीतबद्ध करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कोई धुन आ गई दिमाग में, उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके ऊपर मैंने फिर शब्द को बिठाया मीटर के अनुसार। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि लिरिसिस्ट कोई बैठा हुआ है, तो वो कुछ लिख रहा है, साथ में धुन साथ साथ ही बन रही है।
1: जी
0: तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे कि संगीत का प्रोडक्शन होता है।
1: आज आप एक सधे हुए संगीतकार के रूप में हैं,
0: जी,
1: क्या फर्क आया आपके जीवन में, आपकी सोच में, संगीत के विषय में?
0: देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं ये मानता हूँ कि संगीत जो है, उसको म्यूजिक बोलते हैं, मौसीकी है, उसका मन के साथ बहुत बड़ा ताल्लुकात है।
1: जी
0: क्योंकि सब कुछ कनेक्शन है मन के साथ,
1: जी
0: माइंड मनस जिसको बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया गीत सुन लिया,
1: जी
0: मतलब जो रोमांटिक है, तो वो फीलिंग्स अपने आप अंदर से आती है रोमांटिक।
1: बराबर
0: उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई भी हम लोग दुख के गाने सुनते हैं, कोई भी
1: जी
0: जो हार्ट टचिंग हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे आंसू आ जाते हैं, निकल आते हैं। तो
1: बराबर
0: इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर माइंड एंड मनस। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं खुद जो है एक प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ फिजिकल, शायद म्यूजिक नहीं होता
1: जी
0: तो मैं शायद जी नहीं पाता। जीने की जो आस है
1: जी
0: वो म्यूजिक से आ रही है।
1: अभी जो गीत नए नए बन रहे हैं आजकल, उन गीतों में एक खासकर ऐसा लगता है कि हस्की वॉइस आ रहा है, और पहले के गीत जो खुले आवाज में होते थे, एक क्यों ये फर्क आ रहा है?
0: इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वेस्टर्न जो है इन्फ्लुएंस है हम लोगों के, जो है शास्त्रीय संगीत में मतलब डायनामिक्स का उतना यूज़ नहीं करते हम लोग।
1: नहीं, हाँ
0: तो डायनामिक्स का यूज़ और ये सब जो है सब फॉरेन से आया है।
1: जी
0: हम लोग के इसमें जो है फुल थ्रोट में गाना पड़ता है, तभी उसको अच्छा माना जाता है।
1: बराबर।
0: तो पहले के ज़माने में वही होता था कि जो है ना, और उस समय क्या साजो सामान बजाते थे, जो म्यूजिशियंस होते थे, वो लाइव ऑर्केस्ट्रेशन होता था। तो
1: जी
0: इसी कारण जो है ना, उस गाने को भी उस हिसाब से वो लोग गाते थे। अभी के टाइम पे क्या हो गया, सब कुछ मैकेनिकल है,
1: बराबर
0: मशीन्स पे गाने बनते हैं। तो इसमें क्या है कि इमोशंस को देखा जाता है।
1: जी
0: पहले के ज़माने में इमोशंस में किशोर कुमार वगैरह, बहुत रफ़ी साहब इमोशंस में गाते थे, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आने के कारण थोड़ा सा प्रोग्रेशन अलग हो गया है गाने का।
1: जी
0: शब्द हो, म्यूजिक हो, इन्फ्लुएंस फॉरेन का अभी जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो डिमांड है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गाए। क्या है एक रीज़न?

0: क्यों है कि लोगों को वो कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई शास्त्रीय संगीत गा रहा है, वो सब लोग नहीं गा सकते, आम इंसान,
1: बराबर
0: उस हिसाब से गाना पड़ेगा जिससे कि वो लोग को, वो लोग टच कर सके, कनेक्ट कर सके,
1: जी
0: कनेक्टिविटी बन सके उनके साथ। तो क्या है कि लोग उस चीज़ को आसानी से गा पाएंगे। मान लीजिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग बेसुरा भी होते हैं जो ऑटो ट्यून से ठीक किया जाता है, तो लोग उससे कनेक्टिविटी कर पाते हैं कि अरे मैं तो गा नहीं सकता लेकिन मैं भी इस गाने को ट्राई कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, अटेम्प्ट कर
1: बराबर
0: सकता हूँ। तो इसी कारण जो गाने का जो अभी जो है तरीका है गाने का,
1: जी
0: और वो पूरी तरह से बदल गया है इसी कारण।
1: बराबर। अब ये बताइए कि जो आपका जो प्रोफेशन एज अ संगीतकार, एज अ म्यूजिशियन आपने शुरू किया, उसमें क्या क्या आपको अनुभव आए, कौन कौन से गीत आपने बनाए और किस किस चीज़ के लिए बनाए?
0: मेरा जो पहला म्यूजिक एल्बम आया था बंगाली तुम्हारी आंखें थे,
1: ये कब आया था?
0: ये 2021 में,
1: 21 में
0: हाँ
1: आया
0: हाँ
1: था
0: वो काफ़ी सारा लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा
1: जी।
0: लोगों को। ये गाने का भी एक पीछे कहानी है। मेरे पास पहले ये गाना जो आया था ये एज ए लिरिसिस्ट आया था,
1: अच्छा
0: तो किसी ने मुझे अप्रोच किया था कि जो है कि एक मूवी बन रही है छोटी सी OTT में कुछ है,
1: अच्छा
0: तो उसके लिए आप जो है कुछ लाइंस लिख दीजिए, सिचुएशन उन्होंने बताई थी, तो
1: बराबर
0: उसके ऊपर मैंने वो गाने को लिखा था। उसके बाद मैंने उनको भेजा, उनको पसंद आया, तो उन्होंने फिर बोला कि वो लोग धुन बनाएंगे। तो फिर बाद में बोला कि आपके दिमाग में कुछ है, मैंने कहा हाँ है, फिर मैंने धुन भी बनाई उसके, तो
1: अच्छा
0: उनको पसंद आया। लेकिन क्या हुआ कि वो मूवी शेल्फ हो गई, मूवी बनी नहीं,
1: जी।
0: तो बाद में मैंने ये गाना रिलीज़ किया म्यूजिक वीडियो के तौर पर।
1: ये आपका मतलब एक गाना आपने रिलीज
0: हाँ
1: किया,
0: जी हाँ जी
1: ये गाने की थोड़ी धुन हमको सुनाएंगे
0: हाँ बिल्कुल
1: प्लीज।
0: बिल्कुल, बंगाली इसमें है,
1: जी बिल्कुल
0: इसमें है कि एक लड़का और लड़की दोनों शहर आए हुए थे, दोनों जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
1: जी हाँ
0: कोई उनको काम नहीं मिल रहा है, तो लड़की जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो लड़का उस दिन भी जाता है और असफल होके आता है, जब उसको देख के ये लड़की समझ जाती है कि आज भी असफल हो गया है, कुछ हुआ नहीं,
1: जी
0: तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो उसको पेप अप करने के लिए लड़का कुछ गा रहा है।
1: जी

0: तो ये दो लाइन है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि चलता रहेगा ना। आपके करियर में आपने कई सारे गीत गाए हैं, तो इस सफर में आपको ऐसा यादगार कोई अनुभव रहा होगा तो हमसे शेयर कीजिए।
0: यादगार अनुभव तो राय, हर गीत का एक अपनी जगह होती है। अब मेरी लाइफ में सारे गीत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही एक मूवी के लिए, बंगाली मूवी के लिए मैंने गाना कंपोज किया, लिखा और गाया मैंने।
1: जी
0: वो मूवी जो है अभी इफ़ी जो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसमें गई, फिर उसके बाद केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में
1: जी
0: वो मूवी सिलेक्ट हुई थी, और इस साल जो है वो मूवी कांस में उसकी ट्रेलर रिलीज हुई
1: जी बहुत
0: और पोस्टर भी, और अभी इसी मंथ जो है ये बर्लिन में जो
1: जी
0: इंडो जर्मन जो फिल्म फेस्टिवल चल रही थी उसमें ये मूवी ने जूरी अवार्ड जीती है। तो इस मूवी में क्या हुआ, जो गाना मैंने कंपोज किया है वो गाना 2 साल पहले कंपोज किया, क्योंकि शूट चल रही थी तो मुझे
1: वाह
0: डायरेक्टर ने बोला था, इनके डायरेक्टर जो है अमिताभ चैटर्जी है, काफ़ी नामचीन डायरेक्टर हैं बंगाल के जो आर्ट मूवी बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इस सिचुएशन के हिसाब से गाना चाहिए, तो
1: जी
0: मैंने उसको फिर लिखा, उन्होंने कुछ शब्द भी बताए थे, फिर उसके बाद मैंने उसको जो है धुनबद्ध किया।
1: ऐसा कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है।
0: ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं लेकिन एक गाना जो है वो बहुत मुझे पसंद है,
1: जी
0: ये आर डी बर्मन का ही कंपोज किया हुआ गाना है। पहले बंगाली में, फिर वहां से मैं हिंदी में, हिंदी की
1: जी
0: तरफ
1: बिल्कुल
0: जाता हूँ।
1: बिल्कुल।

0: रिज जी, आपने अपने अनुभवों और विचारों से हमारे श्रोताओं को संगीत की दुनिया की एक खूबसूरत झलक दिखाई है। आकाशवाणी मुंबई की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए और इस संगीत के सफर में आपकी यशस्विता के लिए। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आकाशवाणी का कि मुझे ये मौका दिया गया यहाँ आके मैं साझा कर सकूँ अपने जो
0: जी
1: भी एक्सपीरियंसेस हैं आप
0: जी
1: लोगों के साथ। और अगर जो भी मैंने बात कही है उससे किसी को अगर 10% भी फायदा हो तो मैं
0: जी
1: सोचूंगा कि मेरा यहाँ आना साकार हुआ।
0: बहुत अच्छे। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम और नई प्रेरक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आकाशवाणी मुंबई के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राजू कुमार भारती ने।
2: हिंदी कार्यक्रम विविधा आत्ता सपन एकला। सुरों का सफर गायक और संगीतकार पृथ्वीराज बोस से मुलाकात। कार्यक्रम अपन एकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून।
3: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
4: गुरु आहे काशी सारी तीर्थे पायापाशी। गुरु महतीचा असा उत्सव म्हणजे गुरु पौर्णिमा। या निमित्ताने सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ गायक रवींद्र साठे येत आहेत आपल्या भेटीला।
3: कोणतरी गुरु असावाच प्रत्येकाला आणि योग्य असावा। सुदैवाने माझ्या आयुष्यात मला खूप चांगले गुरु मिळाले। माझे वडील भास्कर चंदावरकर आहेत, रघुनाथ मंगेशकर आहेत, तर जब्बार पटेल माझे नाटकातले गुरु, शिकवणारे गुरु होते। म्हणून प्रवास इथपर्यंत आला।
4: सुप्रसिद्ध गायक रवींद्र साठे यांच्या गुरूंच्या आठवणी, शिकवून जाणारे अनुभव क्षण, परीक्षा पाहणारी गाणी आणि संगीतकार सहगायक यांनी दिलेलं मैत्रीपूर्ण ज्ञान ऐकायला विसरू नका। बुधवारी 29 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता आपल्या FM गोल्ड वाहिनीवर 100.1 MHz वर आणि न्यूज ऑन AIR ॲप वरही गुरु पौर्णिमा विशेष कार्यक्रम।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राचे AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीचे कार्यक्रम, प्रसारित करीत आहोत मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार। सुरुवातीला ऐकूया किचकवध या चित्रपटातील गीत लता मंगेशकर यांच्या स्वरात।

0: मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोते हो, मंगलवार दिनांक 28 जुलाई रोजी सायंकाळी 6:29 ऐकायला विसरू नका
2: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेला आकाशवाणी नागपूर निर्मित कार्यक्रम
1: अमृत कलश।
2: या कार्यक्रमात आपण दुर्गम क्षेत्रातील आरोग्य सेवा आणि सामाजिक कार्य
1: या विषयावर ज्येष्ठ नागरिक दीपक नारायण डोंगरे
2: यांची आशिष सातपुते यांनी घेतलेली ही मुलाखत।
3: पहिले तर आपली प्रकृती जपावी, अव्यवस्थित आणि अनियंत्रित वागणं आचरण चांगलं असावं, योग्य दिनचर्याचे नियोजन करावे, मन भावना संगीताचा आनंद घ्यावा, वाचनाचा छंद जोपासावा, गरजेपुरते आराम विश्रांती आणि झोप, त्याचप्रमाणे भ्रमण विनाकारण अंथरुणावर दोन टाळावे, विनाकारण चिंता न करता वर्तमानपत्रात हसत खेळत जगणं, व्याधीवर वेळेत उपचार घ्यावा, संपेनुसार सहकार्याची भावना बाळगावी, पैशाचा योग्य विनियोग करावा, या उद्योग करात महत्वाचा वाटतात।
1: हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होईल
2: आणि महाराष्ट्रातील सर्व आकाशवाणी केंद्र सहक्षेपित करतील।
1: तेव्हा ऐकायला विसरू नका
2: आकाशवाणी नागपूर निर्मित कार्यक्रम
1: अमृत कलश।